0: ties with Sonny G. Take advantage of every red light, motorway trip and carpool to reach thousands of listeners a day and promote your business or event. To get more info or to book, email advertising@sonnyg.org.
1: सनी जी पॉजिटिव डेस्टिनेशंस प्रोजेक्ट आपके लिए रोजगार या ट्रेनिंग के मौके हासिल करने में मदद फ्राहम करता है। हम आपको CVs, कवर लेटर्स, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म्स लिखने में मदद कर सकते हैं। इंटरव्यू के एडवाइस देने के साथ साथ आपके ड्राइविंग लाइसेंस, PVG या पासपोर्ट के एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने में और कॉलेज या मजीद तालीम के कोर्सेज के लिए अप्लाई करने में भी मदद कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए sunnyg.org पर विजिट करें या 01414453741 पर कॉल करें। मुफ्त मुलाकात की बुकिंग के लिए javed@sunnyg.org पर ईमेल करें। सनी जी रेडियो आपको पॉजिटिव डेस्टिनेशंस तक पहुंचाने में आपकी मदद करता है।
2: You're listening to Sunny G Radio,
3: putting unity in the community.
4: 24/7, 365, all day, all year round.
5: You're listening to The Power Hour here on Sunny Govan Radio with myself, Kyle Thompson. Up next, I have Just Because by Pierre, I think is how you pronounce it. Now, I overheard this in Spain as well. This was actually in... I overheard this in a car hat shop, which makes like workwear, but over in Spain, for some reason, it's kind of like Vans. So it's like skater wear. You've got caps, tops, flannel, all that stuff. And overheard this song. It's by an LA-based band called Pierre. And the grooves on this song, my goodness, I'm like, what is going on there? It's just sounded so cool. So I've decided to play it for you, no, just because.